कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो या

0: पीआरबीटी 01600033205 पीआरबीटी 6054017 यूटीएल 7732506
1: शब्द संगीत र स्वर माधव केसी अरेन्जर यमन खनाल उत्पादक तथा वितरक सुपा देउराली म्युजिक प्राली काठमाडौँ प्रबन्धक यमन खनाल सम्पर्क 9849